हारून लंत्राल दसम से तीसरा तरीसी दे देदास देखदा को श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीते विशेष स्थान अगत अवरणीय गायके ओगे सतुटुमत नारतन में जनता और लंगावन गायन शैली निसा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीते नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वन गीत उगे नामे अमरणीय कला उगे गायन शैली सरल सतुट सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिता की प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेडकरमी श्रीलंका बाइला संगीते वगेम अनिकुत गीत जातंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार अरुण लंत्रागे गीत अदत् उत्सववल विवाहवल सह सतुट अवस्थावल अनिवार्यं अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीविते रसे मतक्करवन अमरणीय अंडाक

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पस्तुना इदास नाम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतकरण अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नंबर से पहले पता लगा दस नंबर से आसुग के साधारण वेन्यू के श्रीलंका संगीती पुरोगामी अतिशय गौरव के पात्रों संगीतज्ञ को सह गायक और श्रीलंका संगीत के स्वदेशी रसे नव सुरवीम सह निर्माणशीलत्व गिना आय सिंगल संगीत स्वदेशी हंडक नव मंपेतक सह सत्य रसज्ञना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते म हदवतट लंगावन रसज्ञनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्वे श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांतगे गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्वे सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बहुत पत्तुना हत्या असु दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनी मल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैल्य सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासिताव किं पिरीति बुना उत्सव विवाह अवस्था वलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सातुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक करण अमरणीय हंडाक

प्रिया सूर्य सेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयात निशा ओगे गीत अदत जनप्रियत्वे आयमी नोवी जीवमानो पवतिनो हत्ता वसुव दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत ओहु गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवतट सुजम लंगावेन विलासितावकिंग पिरीतिबुन निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सेनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ